मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखां ना मेरे कोल रूप है, ना मेरे कोल अखां ने, ना अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल ज़बान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभाव, तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां, जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

0: कालमूरत अजूनी से भंगुर प्रसाद जब आज सच जुगाल सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असि भी उन्होंने दर्शन करने आया किथे मिलेंगे?
0: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
0: हाँ बेटी, गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर साडे पागां च उन्होंने दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे, उन्हों का रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
0: हाँ, तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
2: तन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी था है, तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंड जाके कुछ खान नू लैनी हूं, नाले पता कर लांगे तुंग पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
2: छेती आना। तन गुरु रामदास।

0: मैं ठीक हो गया, मेरा रूप तो पड़ गया, मैं चल फिर सकता। पंडित जी ने एक तेरे से दुख दफा लो जो अज मैं नवे जीवन मिले। रजनी रजनी मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग टूटा गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहने मेरे पति जिन्होंने मेरे से छुटकी गई से किसी ने कितने ने मेरे पति?
0: मैं थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंपूर नहीं लैके, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोलगढ़ लैके, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है पर थोड़े रोग की भी ठीक होया?
0: ये सारी करामात इस चलती है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई कागो हंस करी, तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म धोते पैसे।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले, माता के दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी, धन गुरु अमरदास,
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: नस तो जाए सरावत।

क्या मांगे आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है। ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाणे। तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा। खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा एक जगह इकट्ठिया कीता।

सानू सारिया नू बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया, देवी देवतें अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके

जित कर हर कंत ना प्रगटे, पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूनिया मीत सज्जन सब जाम, नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ावया दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

अपने पिता दी गोद विचों बड़ी बेरहमी नाल बड़ी बेदर्दी नाल बाहर खिंच लिया। निमाणा जिहा होके पुछदा, हे मां मैनू इक गल दा पता नहीं लगा, भाई तू राणी है के गोल।

भगती कर, ओनू याद कर। परमेश्वर यारा दिए जिंदो होइए भगत पुनीता, बाहर चलिया करन तप। 5 साल दा छोटा जिहा बच्चा कहंदे ने, सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते टाइयां टाइयां तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा है, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना, आपस विच प्यार नाल हसते ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नूं तू आप ही जानदा है, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, ते मेरे औगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुंदर विच पानी है, इतने साड़ी विच औगुण हैं, कृपा कर

पेते अवगुण हमारे, दया करो किच मेर पावो, डूब दे पत्थर तारे। जीवड़ा अग्न बराबर तपा, पीतर वगे काती, प्रणवत नानक हो।

बादशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छिलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउणे। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नू फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बालक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बालक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनू पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जे

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संग

भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथो ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहु विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासो बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कऊं शस्त्रधारी कऊं विद्या के बिचारी कऊं मारत आहारी कऊं नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

सतगुरु कहिंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसी दूजे बच्चे नूं पुछिया, छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने अजकल ते टाइया टाइया तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना, आपस विच प्यार नाल हसते ने खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पूंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

करुणा निदान हे पतत पावन कृपा निदान जगत गुरु तेरे तो बिना मैनु कोई आसरा नहीं किस ही को

बाबा फरीद जी सूफी फकीर जिन्हों की बाणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती है। कहिंदे ने जिन्हां नूं अपनियां वडियाईयां दा कोई बंदा नेक काम करे ओहदी संसार वडियाई करदा है, कोई भला काम करे ओहदी वडियाई करदा है, ते जे अपनियां वडियाईयां वल वेख के ओ माण विच आ जावे तां साहिब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी कहिंदी है भई ओ जिवें मूले धारमी पैंदा होवे तां नीवें थां तां नकानक भर जांदे ने, उच्चे थां सुके दे सुके ही रह जांदे ने। ऐदां वडियाईयां करन वाला बंदा रब दियां बख्शां ते रहमतां तों ऐदां वांझा रह जांदा है जिवें ओ उच्चे टिब्बे रह जांदे ने।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।